परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला प्रगटाण वाला इसम फाइल ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते भेद जीवन दे अनेका ही पेता नूं सरलता विच कर देण वाला कौन है काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह बाबा नंद लाल जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर दी वड्याई करदे होए बेअंतता दसदे होए वड्डे दाते दी हमद करदे होए कहंदे ने तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना तारे रोजी ही राज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना तारे जेड़े तेनू मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने उन्हां दी ते गल छड़ दे तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उन्हां दी तां गल की करनी उन्हां वल तां हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू तो एडा बेअंत है एडा बेनियाज है रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे रोख मीन्स रुखियां रूहान जमा है रूह दी तू तो रुखियां रूहां नूं भी ताजगियां देना है रुखियां रूहां नूं भी सुखियां रूहां नूं भी पालदा है जिन्हां विच लचक ना होवे लचकदार लकड़ी नूं दरख्त गजा दे जांदा जड़ां गजाज दे जांदियां ने हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है पर इक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा समझो कि मर गई अकड़ गई ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है इहदे विचों बड़ी रास दी गल निकलदी है जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा उहदे विच लचक रहिंदी है ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उन्हूं मुर्दा समझो क्योंकि जिंदा तां कदी आकड़दा नहीं मुर्दा ही आकड़दा है पर गुरु साहिब जी इत्थे कहंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने उन्हां नूं भी तू अपने

तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग के शब्द अंदर फरमाते ने कि मैनू तो उही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुन निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी, ते नाले किसे देवी देवता हूरों मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है, गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे उनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी, ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां, किथों मंगा हो, कौन है इसते मुकाबले दा दाता, साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उसदे भंडारे अखुट ने, मोहे दूजी नाही ठौर जिसते हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे, या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है, सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कास्ता ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है, जदों मैं दुआ कीती जदों इल्तजा कीती जदों खाली ठूठा अगे कीता ते उन्हें अगे क्या माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तैनू कहा सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों ने, वो पक्का मंगता है, ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, ते इथे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ये निश्चय हो गया है, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगता, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगता उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या, डीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म अत ढीठ करम, वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता, आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है, आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासू दा

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तू की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

क्योंकि तुम हो सब राजन के राजन। मैं ऐसा सुनिया है ते सुन सुन के हुण मैनू यकीन

परायी है। प्राई स्त्री वन लुक अंदर ठाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह के कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने जट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे सी हेठा कर लिया पिछे मुड़, मैनू तो कोई वेख नहीं। प्यारी सा संगत अद्धी रात, भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर हूं कोई नहीं वेख, पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना आवाज आई केड़ी।

भाई जोग आश्रम में पहुंचे, हजूर में दूरों ही तक देखे प्यारी सास संग तेरी, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गए। आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मैनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पे बुलांदे। भाई जोगा सिंह साहिबां दे कोल पहुंचे, जोगा सिंह भाई आखा जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर नार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा। जोगा सिंह सोच मन, मैं तो समझिया सी गुरु अंतरजामी, कि अंतरजामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा तां मैनू सजा दे, पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर। जे गुरु अंतरजामी नहीं, जे गुरु इथों दिया नहीं जानदा तो मेरी दरगाह च किवें बां फड़ेगा, बारह साल एवें गुरु की सेवा की। आखो अंतरजामी सोचन लग, सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा, गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंदे। हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया, इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजरा नीवियां। हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा फिर खा। तीजी मेरी जसेले साहबा ने किया जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने जसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया, भाई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबण लग गया, की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने तख्ते बहण वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हजर रो पिया। भाई जोगा सिंह पातशाह मैं पापी हां, मैनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो। आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च बोलना था। हजूर कहन लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहन लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, मैं तो सब कोई जा हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप, ते तू कहने गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा सिंह कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कहने लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमायश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया, ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते किया जोगिया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया, पर मैं इम्तिहान च पूरा उतरिया, अजमायश च पूरा। पहले जामे विच सिख ने अजमाया, बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी। पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै। तो जोगिया मैं संगतां दा हुक्म सिर मथे रखे, जे मैं कुड़माचारी भी असीत

0: बादशाह मेनू बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हौमे अखां थाणी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नू पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी ध्यान न पढ़ो।

भगवान सर्व तुम्हारी भाई दूर नेड़े तो चल के मेनू आन दाते दे दरबार जुड़ के ते मालक दिया मेरा दे नाल अपनी चोरियां भरी केडी बख्शिश फिर लगातार बनाए प्रोग्राम अनुसार कुछ दिनों तो आप गुरु दिया मेरा प्राप्त आप भी धनो भागा वाला गुरसिख परिवार गरेवाल परिवार ओ होनहार बच्चा जो अज सारिया संगत वास्ते जिन्हों वालों गुरु का लंगर तैयार हो धन गुरसिख प्यारी सात संगत एक सिख नूं प्रसाद सिखा देना ओदा भी बड़ा फल पंजां सिंघां नूं भोजन सिखा देना पंजां विकलगियां वाला आप आ जांदा है ते जिहड़ा सारी संगत नूं प्रसाद सिखांदा है ओदा तां बेहद बख्श और गुरमुख परिवार भी धन जो गुरु नानक देव बख्शे खजाने चो गुरु के लंगर तैयार है सारिया संगतां ने छके तो प्यारी सात संगत मेहर है बाबा जी बचन करते सन गुरु की मेहर कोई दरख्तों नाल थोड़ी लगी हो गुरु की मेहर कोई दुकाना से थोड़ी विकती है मेहर की निशानी की है जिस वेले आप गुरु नाल जुड़ जाइए समझो मेरे ते गुरु की मेहर जिसनों तो प्रभ वल तिस क्या मोछनगी जिसनों तेरी मेहर सो तेरी तो आओ तेरी सास संगत आनंद साहब का पाठ करके कीर्तन की समाप्ति करी अमृत वेले फिर आके जो तैयारी सात संगत बस एक दो दिन बाकी रह गए हैं ते संडे दा प्रोग्राम इस प्रोग्राम दा आखिरी प्रोग्राम है फिर नदी नाम से योगी मेला कल साहब जी बख्शिश करन आप जी दे दर्शन तो मैं आस करदा जिथे प्यार नाल प्रबंधकां ने प्रोग्राम बनाए वार साल दियां संतां दा प्यार तो मैं आस करदा आउंदे प्रोग्रामां च अमृत वेले भी आके जो अमृत वेले दा जो आनंद है प्यारी सास सिंह तो कहने को शोभा नहीं देखाई अज पिनी रह लड़िए पिनी रह लड़िए चमकण तारे रहा शब्द अमृत वेले पढ़िया सारी संगत गूंजदी इंज आखदा सी जिवे सचमुच जा गए संत जना मेरे राम उन्हां नूं संत पदवी मिल जाए तो अमृत वेले भी ते शामां नूं भी जुड़ो आओ साहब दा पाठ सारी बंदी करी धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी पंथ देवाली सतगुरु जी आप जी दी महान महान बख्शिश द्वारा आप जी दे दरो तरो वरसाए आप जी दे प्यार वाले गुरसिख पाई पाई पातशाह जी दे बख्शे खजाने विचों शब्द आदर करदे पातशाह जी दी बाणी नाल जुड़ के बाणी दा प्यार करदे हुए कीर्तन भेट पाउण अरदास कराउंदे हन मेरे अंतर जामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चिया नूं सर्वत माई पाई नूं नामदान बख्शो सिखी जीवन बख्शो अपने चरणा दा प्यार

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है।

दो प्रेमी आए। इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकिया, सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई, थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने। थोड़ी देर बाद दो चार होर प्रेमी आए ने, उन्हां भी संदूखड़ी विच पैसे पाए, मत्था टेकिया, वो भी बैठ गए ने। ज्यों ज्यों पौ फुटाला हुंदा गया, तीन चार सौ दे करीब लोकां दी भीड़ इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन, कदों ए जोगी राज अखां खोले, सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नू इना बैठिया लोकां नू इंज लगया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जी फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने, जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। वो तुरदे तुरदे इन्हां सारिआं लोकां दे सामने आ के बैठ गए। दोनां मुसाफरां ने उस जोगी राज वल देखिया। एक मुसाफिर मालक जापदा है, एक नौकर। नौकर कहन लगा, ए जोगी राज किवें मन टिका के बैठा है, किवें इहदा मन परमेश्वर दे नाल जुड़े है। उस मालक दा नौकर मुस्करा पिया, मुस्करा के अपने नौकर नू, हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा, लोहे दी संदूखड़ी नाल?

बनी उस वक्त ए शब्द उचारिया काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहायता करनी।

साहब जी कह लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जदके तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

भगत कबीर साहब दा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ये बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई,

जिन्हां ने गज साढ़े तै तह धोतियां साढ़े तीन तीन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनिया ने तेहरे पाए ने तग ते तेरे तेरे जनेऊ गल च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गला विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ा जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ा नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बाल देने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई तनी

इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए तनी आदमी बैठ गए, गल्लां बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली गुआच गई है, किधरे तुसा देखी ता नहीं? ते नामदेव जी दूर बैठे हुए सन, ओ हस पे।

है पाई, काहे को कीजे ध्यान जपन। जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ये संत चोले ता लम्बे लम्बे

मेरे गलों झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपया ओदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो तुसी भी इन्हां पखंडा तो

जदू बाबर ने हमला करना है ता हर पासे दुखां दे वैण होणगे, लोकी रोणगे कुरलाणगे, ते संदूर दी जगह इन्हां दे सिरां विच लहू भरेगा।

शेर शाह सूरी नूं कहा कि एक वह भी समा आवेगा कि पहला बाबर का कब्जा हिंदुस्तान से होवेगा। वह बाबर नूं हिंदुस्तान दे विचों

जो कुछ किया ए हो के रवेगा। ए सुन के सारे घबरा गए। एक ब्राह्मण मेव्यां दी चंगेर लेके आया। महाराज ए जड़ा बाबर ए बला हिंदुस्तान ते चढ़ के आ रही है, ए रुक नहीं सकती। साहब जी कहन लगे नहीं, जो होना सी वो कह दिता है, हो के रवेगा। पर जे तू बचना चाहना है अपना परिवार लैके इथों दूर चलिया जा। ए अगमी खबर कही। धन गुरु नानक साहब जी चले गए। ए खबर अग दी तरह चार चफेरे फैल गई। जिन्हां सच मनिया वो चले गए, जिन्हां सच ना मनिया

जेड़ा अगे आया उन्हों खत्म कर दिता। बच्चियां तो लैके बुजुर्गां तक किसे नु भी कतल करन तो छड़िया नहीं। जदों मीह पैंदा ते नालियां पानी दियां भर के चलदियां ने। इन्नी कतलेआम कीती के इमना बाद गलियां जिहड़ियां सन खून दियां भर भर के चलियां। हुण बाबर ने अपनी फतेह दा डंका वजाया। जेड़े बचे उन्हां नूं कैदी बना के वापस तुर पिया। जदों ये हमला होया तां गुरु नानक साहब इमनाबाद दे बाहर

चुप महिला कहा सुबंक सराई। ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया सरा।

इस माया दे करके सारी लड़ाई हुई, पर हैरानगी की गल ए कि ए माया पापा तो बगैर कठी नहीं होंदी ते मर गया दे नाल नाल भी नहीं जांदी। जदू आदमी मर जावे ते माया

हिंदवाणी, तुरकाणी, पटियारन ते ठकुराणी। किसे दा सिर पाट गया, किसे दिया बाहां वड़ियां गईयां, कोई थां ही मर गया ते उन्हां नूं मसाणे विच जाके साड़ दिता गया, भाव कि सिपाहियां ने किसे दा विलाज नहीं।

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना है, मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाने विच है। किथे जाके रोईए क्यों के सब कुछ तेरे हुक्म विच है, तू जो चाहवे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते ले जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लै के वापस आ जांदा है। इस तरह ऐ इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन का दिन जदों मुक जाएगा

जो मर्जी इकट्ठा करी जाओ, मैं तुहानू नहीं रोकदा। इंसान मरिया वेड़े विच पिया, सारी उम्र पालना कीती, घर बनाया, तेतियां पुत्र कहंदे ने जेबां खोल लो, बटुआ तां नहीं, घर दियां चाबियां तां नहीं, हाथ देख लो कड़ी तां नहीं बन्नी, सोने दा कड़ा तां नहीं पाया, कोई अंगूठी तां नहीं पाई, जे है तां सब कुछ ले ले, जे चंगा सूट पाया है तां सूट भी ला लैंदे, घर दा मालिक। सारी उम्र धियां पुत्रां वास्ते कमाया, अज उन्हां धियां पुत्रां ने सब कुछ ला लिया, एक कफन पा के लैके तुर पए, शमशान घाट लै गए। जे कफन चंगा होवे ते कई वारी साड़न वाला उत्तों ला लैंदा, माड़ा कफन रह गया, अग लाई ते अगन देवता कहंदा भाई आया ते नंगा सी, कफन किथे लै चले, कफन भी वो साम साम लैंदा है, शरीर भी नाल नहीं जांदा। ते साहिब जी कहंदे ने भाई जे मरन वाला अपने नाल कुछ लै गया तां तुसी भी पाप करी जाओ, माया कट्टी करो, मैं तुहानू नहीं रोकदा।

कोई काम कर लो ज्यों लाहा लाहा कहते ने लाभ तोटा कहते ने नुकसान जे किसे काम विच लाभ है ते नुकसान भी जरूर है ते पाई जिड़ा जमया है उन्हें मरना जरूर है ते परमेश्वर दी रीत है ते हुन

अपने ते दोष नहीं लिया। इमना बाद लोग बड़े पापी सन, उन्हां लोकां नूं सजा देनी सी, पर तू जम कर मुगल चढ़ाया। मुगलां नूं जमा दा रूप दे के इमनाबाद ते भेज दिता, ते उन्हां ने इत्थे दे लोकां नूं कतल कर करके गलियां दे विच रुला दिता।

0: सोई।
1: पर फिर ताना मारे फिर शुक्र विच आ गए। ए करता या काल पुरख तू सारे आंदा है, पर एक गल है जे सकता सकता कहंदे नहीं तगड़े आदमी नू। जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं होंदा, पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी। बाबर दे कोल बंदूकां सन ते एमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन। ए कोई बराबर

कवि मैं बहुत वड्डा वा, मेरे वर्गा कोई बहादुर नहीं, मेरे वर्गा कोई अमीर नहीं। ते गुरु साहब जी कहंदे ने अकाल पुरख खसमी नदरी कीड़ा आवे, ओ इंसान तेरी निगाह विच एक कीड़ा है के कीड़ियां दी तरह ओ दाने पिया चुगदा है। कई जन्म लैके कई बारी मर के इंसान जिहड़ा है फिर भी तेरे अंत नूं नहीं पा सकिया। खसमी नदरी कीड़ा आवे जे ते चुगे दाने, मर मर जीवे।

इस शब्द का उपदेश किया। फिर बाबर ने बेनती की, मेरे ते कृपा करो, मेरा राज अटल रवे। गुरु साहब ने कहा, बाबर किसी का राज अटल नहीं रहा, पर हां जे सच ते चलने तुहाडा राज रहेगा। गुरु साहबां दे आशीर्वाद दे नाल इन्हां दा राज हिंदुस्तान ते शुरू होया। ज्यों ज्यों बाबर दी वंश ने सच ते न्या ते प्रजा की देखभाल की, इन्हां दा राज चलदा रहा। जदों इन्हां ने जुलम शुरू किए ते औरंगजेब दे वेले जिन्हें जुलमां दी अत चुकी, इन्हां दा राज खत्म हो गया। गुरु नानक साहब तो राज शुरू होया ते कलगी धर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दे वेले इन्हां मुगलां दा राज जिहड़ा सी ए फिर खत्म होना शुरू हो गया। सच ते चले राज रहा, सच तो डिगे।

सुख सागर पूरन परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना। ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे। निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।